प्रोग्राम की समाप्ति का वक्त हो चुका है। मैं तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे बड़े ही होनहार टेक्नीशियन है इब्राहिम एब्रंस, जो बहुत सालों से है रेडियो स्टेशन के साथ। जब मैंने ये रेडियो स्टेशन के साथ प्रोग्राम करना शुरू किया था तब से इब्राहिम है, तो मैं तहे दिल से उनका शुक्र अदा करना चाहूंगी। और आप हमारे सुनने वाले, आपकी दुआएं, आपकी हौसला अफजाई, इंशाल्लाह आप भी मुझे दुआ में याद रखें और मैं भी आपको दुआ में याद रखूंगी। इसके बाद आप सुनेंगे सलामी, और अगले हफ्ते भी आप मेरा प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम सुनेंगे। फी अमानिल्लाह, शब्बा खैर, जज़ाकल्लाह खैर।